0: other than a very very nice evening. तो आप लोग थैंक्सगिविंग उम्मीद है कि अच्छा गया होगा और सब फैमिली जमा हुई होगी. हमारा तो ज्यादा ही अच्छा हुआ. ये मेरी गुड न्यूज है कि मेरे भांजे की शादी थी. एक्चुअली मेरे हस्बैंड के भांजे की शादी थी तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग फैमिली के आए हुए थे. मेरी अपनी फैमिली टोरंटो से आई हुई थी तो इट वॉज अ रियली नाइस थिंग के थैंक्सगिविंग और शादी सब साथ थी तो बहुत ही अच्छा लगा. और थोड़ा सा स्नो का भी मजा चखा हम लोगों ने. लेकिन अच्छा है कि अब अच्छा वेदर हो गया फिर से. तो उम्मीद है कि आप लोग सब लोगों का थैंक्सगिविंग बहुत अच्छा हुआ होगा. सब फैमिलीज जमा हुई होंगी तो इंशाल्लाह आपसे हमारी 9 बजे तक मुलाकात रहेगी
1: इंशाल्लाह.
0: तो अब हम आपसे हम बताएंगे आज हम लोग का ये जो एपिसोड है वो किस चीज के बारे में है. तो हमारे साथ रहिएगा 9 बजे तक
1: इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच सलमा जी. जी आज भी जैसे आपको पता है नवंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं. चाहे वो चाहे हमारे जो है मुस्लिम कम्युनिटी हो, इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी हो, या तो हमारे इंडियन कम्युनिटी से हैं. तो इस बार भी जो है बस तो वही अपना साल का जो है अपना त्यौहार शुरू हो गए. और आप सबको पता है जैसे नवरात्रि भी अभी गई और अभी जो है दिवाली आ रही है. तो उसी के मौके के लिए हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त संजीव यहाँ, संजीव नागपाल जी यहाँ पर मौजूद है. हेलो संजीव भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं?
2: नमस्कार सबको, सुनने वालों को राम राम.
1: जी जी राम राम जी, बिल्कुल बिल्कुल. दिवाली आ गई और आपने जो मिठाई नहीं लाई, बर्फी
2: जिन्हें डब्बे को उतरे लाए. मिठाई की क्या कमी, आजकल तो शुगर की वजह से सबने मिठाई खाना छोड़ दिया.
1: अच्छा कोई जो है स्वीट डिश वाला नहीं सुन रहा है यहाँ पे, रेस्टोरेंट वाला नहीं सुन रहा
2: है, बिजनेस में गड़बड़ हो जाएगी.
0: जी जी बिल्कुल.
1: आपको ये जो इवेंट आ रहा है तो उसके लिए रेडियो सुसंगम इट इज द जो है ऑफिशियल मीडिया पार्टनर फॉर दिस इवेंट. हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी.
2: जी
1: संजीव भाई, हरियाणवी के बारे में बताओ, ये अपने क्या सोसाइटी क्या करती है?
2: ये जो हरियाणा है,
1: हरियाणा
2: हमारा जो राज्य है हरियाणा, दूध दही का खाना, यू नो हमारा देश हरियाणा. सो हरियाणा का जो है हमारा नवंबर 1, 1966 में जन्म हुआ. लाइक यू नो उसमें लैंग्वेज को, यू नो एक भाषा को, उसको एक रेकग्निशन दी गई. और साथ में अगर आप कितने अभी गेम्स देख रहे हैं, जो हरियाणा के एक अपना ही सादापन है, लठमार लैंग्वेज है.
0: अच्छा
1: ओके.
2: अरे भाई के ग्रह तो दिमाग खाओगा.
1: अच्छा ओके.
2: इस तरह लठमार लैंग्वेज बोलते हम.
0: अच्छा ओके. तो ये लैंग्वेज आपकी अपनी बनाई हुई है कि आप लोग?
2: ये सिंस आई बोर्न, लाइक मैंने तो यही सुना है. तो वो जो ये लैंग्वेज हरियाणा का एक यू नो ऐसा ट्रेंड जो दूसरों को ये लगता है लड़ाई कर रहे हैं.
0: अच्छा अच्छा. प्यार की लड़ाई,
2: प्यार की लड़ाई लैंग्वेज उस तरह का. तो वो लैंग्वेज का उसमें योगदान जो है, हरियाणा को अपना एक हरियाणी बोलने का मौका मिला. और उसके बाद आप ये लगाए आज के टाइम में आप कितना देखते हैं, सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है हरियाणा का इंडिया के अंदर, जितने भी आप देखोगे खेल में खिलाड़ी वगैरह जो है, तो वो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज को आगे बढ़ाना. चाहे बॉक्सिंग में चले जाओ, चाहे अभी क्रिकेट में भी बहुत बंदे हैं ऐसे. तो हर फील्ड में कहीं ना कहीं हरियाणा वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें.
1: ओके.
2: तो तभी एक 1966 में जब ये हरियाणा का नाम उसको हरियाणा दिया गया, तो तब से फिर ये लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज हरियाणा ही बनाई गई वहां पे.
1: हरियाणवी लैंग्वेज.
2: तो हरियाणवी लैंग्वेज है हरियाणा जो हमारा राज्य
1: स्टेट है,
0: प्रोविंस है. तो ज्यादातर यहाँ पर ये हरियाणवी बोली जाती
2: है. हरियाणवी भी बोली जाती है वहाँ पे. मेरा टच क्या है कि यू नो आई बीन टू दैट कैनेडा लॉन्ग टाइम, लाइक यू नो सो मेरा वो थोड़ा कम हो गया. बट अब जैसे मेरे सर्कल में और हरियाणा वाले हैं तो उनके साथ रह के फिर वो लैंग्वेज फिर वही लैंग्वेज प्रैक्टिस हो जाती है.
1: जी,
2: तो फिर वो हमारा थोड़ा होता है भाई साहब की मैं खाया कि नहीं खाया, बैठ जा रहा है जिम ले.
0: अच्छा,
2: जिम ले मीन खा लो तो दूसरे को लगता पता नहीं क्या मार के बिठाएगा उसको.
1: संजीव भाई हरियाणा किधर है इंडिया में? किस तरह
2: हरियाणा? दिल्ली के नेक्स्ट डोर.
1: अच्छा दिल्ली के नेक्स्ट डोर.
2: यस. अब पंजाब में जैसे पहले हरियाणा आएगा फिर पंजाब आएगा, तो उधर दूसरी एंड पे जो हरियाणा निकलने के बाद राजस्थान आएगा. तो इस तरह पहले हमारा हरियाणा ही है जो उसमें पैरेलल चलता है उसमें.
1: अच्छा अच्छा. तो यू नो लाइक यू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम जो है हम जो हरियाणा की बात कर रहे हैं. थोड़ा हरियाणा के बारे में हो जाए कि वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या लोग करते हैं ज्यादा, क्या ज्यादा वहाँ का कौन सा खाना मशहूर है, क्या पहनते हैं लोग.
0: गुड क्वेश्चन.
2: हाँ वो गेस्ट टाइम. सो उसमें

0: हरियाणा का क्या है, मैंने आपको बताया सादा और सिंपल जी। अभी थोड़ा हमारा हरियाणा का जो कल्चर है वो डेवलप हो गया है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल कुर्ता पजामा और धोती डालनी, पजामा भी नहीं धोती डालनी, और सिर पे जो पगड़ी होती है व्हाइट कलर की वो डालनी, और हुक्का सामने लेके बैठ के हुक्के का एंजॉय करते हैं। वो चौपाल होती है, चौपाल मीन लाइक यू नो हमारा एक एरिया, जैसे उस एरिया में शाम को सभी इकट्ठा होना, तो हुक्के का एक ट्रेंड है वहाँ, पानी डाल के हुक्का में बैठ के, और खाना बड़ा सिंपल।
1: अच्छा, आपका क्या सिंपल खाना?
0: सिंपल खाना दाल रोटी या सब्जी जो सी है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: मीट नहीं खाते थे।
2: अच्छा,
0: यस। ओनली जो कुछ वो है विश्नोई जो है उनमें कुछ ऐसी जो है कम्युनिटीज जिनको बोल सकते हैं, वो बिल्कुल भी मीट का उनका कुछ भी वो नहीं है।
1: अच्छा।
0: तो वेजिटेरियन ही है सब।
2: राइट,
0: मीट का अवॉइड करते हैं मोस्टली, सादा सिंपल खाना खाना और देसी खाना खेत से लाना, और खुद सबसे ज्यादा जो है वहाँ पे दूध दही हरियाणा में ही आपको मिलता है ये।
1: ओके ओके,
0: राइट।
1: तो सबसे ज्यादा टॉप स्पोर्ट्स कौन सा है हरियाणा?
0: हरियाणा एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम बहादुरगढ़, राइट नेक्स्ट टू द दिल्ली। बहादुरगढ़ से शुरू होके उसके बाद रोहतक, रोहतक से मेन सिटी रोहतक आती है, फिर हमारे जो जिस शहर से मैं हूँ हिसार है, वहाँ का पेड़े बहुत मशहूर है।
2: पेड़े, हाँ, ओके।
0: पेड़े अगर आप हांसी के जो खाएंगे और जो गाजर पाक खाएंगे इट्स रियली गुड, यू नो। सो उसके बाद हिसार, फतेहाबाद, सरसा, डबवाली, बठिंडा, ये सब फिर बाद में बॉर्डर।
2: बठिंडा, ओके, बड़े नाम।
1: तो इसका आपने बताया कि ये खेल के मैदान में काफी आगे, सबसे टॉप पे इनका कौन सा खेल है?
0: कबड्डी हो गई। आपने वो मूवी देखी है सुल्तान?
2: सुल्तान, हाँ जी।
0: एक आमिर खान की मूवी थी, दूसरी आमिर खान की मूवी थी, तो ये जो मूवीज बनी है वहीं से हरियाणा से बनी है। राइट, सो वहाँ के जो हमेशा कबड्डी में नंबर वन रहे, और अभी तो क्रिकेट हो गया, हॉकी, हर चीज में थोड़ा आगे, मोस्टली बॉक्सिंग में हमारे इतने ज्यादा मेडल आए हैं जो हरियाणा वाले जीतने वाले।
2: जी जी जी।
1: अच्छा,
2: तो यू नो अपना संजीव भाई, ये पिक्चर जो है अपना विकिपीडिया पर है हरियाणा का।
0: हाँ जी,
2: ये तो बड़ा डेवलप लग रहा है।
0: जी जी जी जी,
2: मैं ना उनको बुलाना।
0: हाँ जी, हाँ जी,
2: बुलाना उनको।
0: हाँ जी,
2: तो ले आओ
1: उनको, ले
2: नहीं तो आप बात कर मिले।
0: हाँ जी,
1: तो अच्छा, तो फिर लेकिन ये जो दिवाली है, दिवाली तो हर जगह मनाई जाती है, तो ये खास ये जो आप मना रहे हैं तो आपके लोग मना रहे हैं?
0: नहीं, ऐसा नहीं है। जो हरियाणा डे, हम सेम डे पे ही हरियाणा डे है नवंबर फर्स्ट। होता क्या है कि हम ये रख रहे हैं प्रोग्राम 24th अक्टूबर को, सो मोस्टली हम नवंबर फर्स्ट को रखने की कोशिश करते हैं कि सेम डे ही रखें।
1: अच्छा।
0: और इस नवंबर फर्स्ट को आप देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट आ रहे हैं।
1: अच्छा।
0: तो हमें कुछ जगह या फूड जो रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो हमें इसलिए फिर ये डेट हमें 24th अक्टूबर करनी पड़ी। सो हम हरियाणा डे एंड दिवाली दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये नहीं है कि हम सिर्फ ओनली इनवाइटिंग ओनली फ्रॉम हरियाणा, नो, वी वांट टू शो के यू नो हरियाणा कल्चर क्या है, और दूसरे जितने भी कम्युनिटी जैसे पंजाब है, यू नो राजस्थान है, यूपी है, और जितने भी साथ में जो हमें सुन पा रहे हैं, दे मोस्ट वेलकम टू कम।
1: जी जी,
0: राइट। सो इसमें हम ये नहीं कि ओनली हरियाणा को इनवाइट।
1: अच्छा अच्छा, अब ये इसका कनेक्शन पता चल गया कि आपका हरियाणा डे फर्स्ट नवंबर को,
0: फर्स्ट नवंबर को,
1: इसीलिए आप लोगों ने ये इसका नाम हरियाणा
0: की जी जी जी
1: और रखी है। जी हेलो,
0: ये रजनीश जी।
1: आप रमेश?
3: रजनीश,
1: रजनीश, डॉक्टर रजनीश, वेलकम टू आवर स्टूडियो। आप कभी आए हमारी तरफ? आप पहली दफा आए? ओके, नाइस टू सी यू।
2: तो सजीव भाई, ये जो हरियाणा है, मैं जो यू नो जो उसमें अपना लिखा है कि इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान नेक्स्ट टू दिल्ली, यहाँ पर जो है यमुना रिवर फार्म्स, वो क्या है? यमुना रिवर फार्म्स,
1: बिहाइंड
3: होली रिवर्स है, हिमालय से निकल के।
2: तो थोड़ा जोर से बोलेंगे भाई।
3: यमुना एक हमारी होली रिवर है, पवित्र नदी है, जैसे गंगा है वैसे ही।
2: अच्छा।
3: और हरियाणा की लाइफ लाइन भी कह सकते हो।
2: ओके।
3: बहुत वाटर्स लाइक एग्रीकल्चर एज वेल ड्रिंकिंग वाटर्स यमुना के है, तो हरियाणा में अच्छा खासा प्रभाव है यमुना का।
2: ठीक है।
3: फिर हम हरियाणा से निकल के दिल्ली में आती है वो, और
2: ठीक
3: फिर
2: है।
3: आगे जाती है आगरा होती है, उसमें
2: और फिर जो फरीदाबाद की नजदीक
0: आगरा का ताजमहल है,
2: हाँ जी,
0: यमुना के बिल्कुल
3: ऊपर ही,
0: बिल्कुल ऊपर ही बना। अगर आप, मेरे को लगता है आपको मौका नहीं मिला वहाँ जाने, काम करते हैं जनवरी फरवरी में चलते हैं, आपको ताजमहल भी दिखा दिलाते हैं।
2: मेरे विटनेस है, मेरे ये देखने वाले सुनने वाले।
0: आमिर खाकी आप जानते हो? आमिर भाई को मैं स्पेशल लेके गया साथ में इंडिया, तो उनको वहाँ ताजमहल दिखा के ला।
2: अच्छा।
0: आमिर खाकी जो आप वॉलंटियर करते हैं सारे जमात।

0: ना राम बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, आते दुनिया में मैं हम राम है, अंदर से कहीं ना कहीं रावण
1: रावण है
0: राइट। तो वो राम और रावण की जो उनकी ये स्टोरी है ये उसी वहां से ही जो सीता माता को उठा के ले गए तो उनका एक टाइम आ गया था कि भाई ये यू नो और कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने ऊपर वालों ने ऐसा कुछ रचा तो उसी के हिसाब से उस सीता माता को जब वहाँ ले गए उनके वहाँ पे जो आज श्रीलंका बोलते हैं लंका में लेके गए, तो फिर हनुमान जी ने उनको हेल्प की तो वहां से माता को लेके आए। तो जब वापसी श्री राम अपने अयोध्या में वापसी आए तो उनका जो दिया जला के उनको स्वागत किया, तो तभी हम दिवाली और पटाखे जो उनसे हैं उसका दिया जलाते हैं उनके स्वागत के। तो वो कंटिन्यूज इतने हजारों सालों से चलता चल रहा है परंपरा जो उनसी है। अभी तो हम ये है ना कि एक कितने कपड़े ये वो, तो हमें उस टाइम पे एक सूट भी मिलता था ना बहुत अच्छा,
2: बड़ी,
0: था।
1: जी, जी,
0: आप समझते उस टाइम
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल उसको। तो जो ये जो दिवाली के जो है अलग अलग नाम है, जैसे वो एक नाम है फेस्टिवल ऑफ लाइक ऑफ कलर लाइट, वो क्या क्या उसमें क्या होगा, क्या डिफरेंट है?
3: फेस्टिवल ऑफ लाइट इसलिए बोलते हैं कि जब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत कर उसकी एक खुशी के अंदर लाइट्स जो दीपक जलाएगा,
1: जी दीपक जलाएगा,
3: वो लाइट एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंट है अच्छाई।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: तो अंधेरा है
1: अंधेरे के बाद उजाला आ गया,
3: अच्छा एक सिग्निफिकेंट है हिंदू रिलीजियस में लाइट, उसी का एक वो है इसको लाइट्स ऑफ
1: स्वागत।
3: ट्रेडिशनली पहले दीपक जलाते थे, आजकल लाइटें आ गई हैं,
1: जी ऑफ कोर्स,
3: या फिर मोमबत्ती वगैरह कैंडल्स हुआ,
1: जी जी जी जी,
2: दिए होते थे मिट्टी के,
0: कुछ देसी घी से जलाते हैं, कुछ सरसों के तेल से, यू नो टाइम के साथ चीजें बदलती चली जा रही हैं। अब दूसरी लैंप लगा के रख देते हैं कि लाइट ऑन हो गई है, तो टाइम के साथ बहुत कुछ
2: बदलता जा रहा है। या तो फिर आप बताइए आपका जो ये हो रहा है इसके बारे में थोड़ी डिटेल दें, ये कहाँ हो रहा है, कब कितने बजे शुरू होगा, इसके टिकट्स हैं कि नहीं, सब कुछ थोड़ा अपना प्रोग्राम के बारे में बताइए।
0: ये हम अक्टूबर 24th को, जैसे हमने आपको बताया कि नवंबर 1st के बजाय हमें 24th करना पड़ा हरियाणा की ओर इसको, तो अक्टूबर 24th को क्राउन बैंक्वेट हॉल में हम ये इवेंट करने जा रहे हैं। इस जो जैक्सन पोर्ट में वहाँ पे कार वॉश है, राइट नेक्स्ट टू द कार वॉश, सभी जानते हैं जैक्सन पोर्ट में एक ही कार वॉश है जो मेन है, तो उसके नेक्स्ट डोर पे ही ये क्राउन बैंक्वेट हॉल है, तो वहाँ पे ये इवेंट का प्लान किया है। तो हमने एक वहाँ पे न्यू ईयर का भी प्लान किया था, लास्ट अभी गया 25th और 26th को वेलकम, तो बहुत अच्छा हो
2: रहा,
0: तो हमें फिर लगा कि क्यों नो ये एक ऐसा जरिया है जो हमारे हरियाणा या जहां से भी हमें बंदे जानते हैं जो हमें सुन पा रहे हैं, तो हम उनको मिल सके, जब उनको मिलते हैं एक दूसरे से कोई कहता है मैं यहाँ का हूँ अच्छा, तो वो एक अच्छा लगता है दूसरे को मिलना, तो आपके आपके सेम प्रोविंस से आए हुए हैं, सेम क्लोज टू सिटी, कई बार सेम सिटी में रहते हैं तब भी हम नहीं मिल पाते, तो ये जब हरियाणा की तरफ से करते हैं अनाउंस कि यस हम ये करने जा रहे हैं, तो फिर वो हरियाणा के कल्चर के बंदे साथ जुड़ते हैं तो आते हैं तो हमारे टच में, तो हमने हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी बनाई इसीलिए कि हम उसके साथ मिलके अपने हरियाणा वाले जो बंदे नहीं यहाँ पे जैसे अपने घर को आते हैं छोड़ के यहाँ नहीं मिल पा रहे एक दूसरे को, तो उस प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे को मिले,
2: ये तो बहुत अच्छा है,
0: तो ये हमारा मेन मोटिव है कि एक दूसरे से मिलना मिलाना हो और उस प्लेटफॉर्म किसी को किसी की जरूरत है तो वो एक दूसरे की हम हेल्प कर पाए,
2: कर सके।
0: ये एक ना त्योहार तो एक बहाना भी
2: होता है
0: हमारा,
2: बिल्कुल
0: राइट, कि हम उस दिवाली को हरियाणा डेज भी रजनीश जी आपको और बताएंगे हरियाणा डेज में हम इंडिया में क्या क्या हरियाणा में करते हैं, तो वो भी आपको डिटेल, तो हमारा मोटिव यही है कि उस प्लेटफॉर्म पे आए, हमारा जैसे न्यू ईयर का पार्टी अच्छा
2: जी,
0: रहा
2: जी।
0: तो हम इस पार्टी को भी इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जलाल भाई को पता है कि जो हमारा रेडस्टोन का इवेंट हुआ वाज अमेजिंग, वो अमेजिंग यही रहा कि सब आप जैसे सबने हेल्प की
2: जी।
0: और जितने वॉलंटियर्स थे हमारे पास, जो टीम थी, हरियाणा का भी ग्रुप हो गया, सभी जो हमारे दूसरे और फ्रेंड्स हैं जो सभी ने आके महाराष्ट्र से भी, उन्होंने हर जगह से जो आ सकते थे हर कल्चर से वहां आए, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी उसको वो करने में, तो हम वही सेम इसमें मोटिव लेके चले हैं, सभी कल्चर्स को इनवाइट कर रहे हैं जो उनको गेस्ट सभी अलग अलग प्रोविंस से जहां राज्य से हैं, तो उनको बुला रहे हैं वहां पे।
1: चलो ये मोटिव है। तो ये जो अक्टूबर के 24 को होने जा रहे हैं क्राउन बैंक्वेट हॉल में, और इसकी टिकट $60 है।

0: child between 0 and 12 years, $40 or per under age, jo ki apna 6 mahine ka hoga, so it's free for the
1: babies, yeah.
0: 6 years. Haan, it's six free.
1: Years.
0: Okay, so apna 6 to 12 is a $40.
1: Kitne baje shuru
0: hoga? Starts at 6 p.m. onwards, 6 p.m.
1: Yes.
0: Cornbacon Hall is very nice hall. Yes. So, wahan par, of course, performance bhi hogi, dinner bhi hoga, performances, dance and celebration. Of course, aapka naya saal bhi manega aur saath mein Diwali ka bhi saath mein hai.
2: Naya saal to fir abhi.
0: Yeah.
2: Fir kuch kar lenge.
0: Kuch lenge. Apni mitti, apne log, apne tohya.
1: अपने
0: त्योहार त्योहार त्योहार त्योहार त्योहार जैसा
2: दिवाली को त्योहार भी बोलते हैं जैसे कोई हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो त्योहार ही बोलते हैं चाहे वो होली है दिवाली है त्योहार ही
3: त्योहार
1: हां ट्रेडिशनल
0: वर्ड है ना त्योहार मूवी में सुना है हमने काफी
3: उर्दू से भी निकला इन थोड़ा सा ये
0: त्योहार उर्दू में त्योहार कहते हैं
3: त्योहार होली चेंज हो के त्योहार
1: वो तो सबके एक्सेंट अलग होते हैं ना
3: ओरिजिन इसका उर्दू है
1: उर्दू जी जी अच्छा अच्छा तो आप हरियाणा में किस तरह से अपना हरियाणा का दिन मनाते हैं आप उसका कुछ टच इस पे लेकर आएंगे
3: हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे हरियाणा की बहुत रिच अगर मिट्टी की बात करूं बहुत रिच हिस्ट्री है महाभारत से लेके राणा सांगा से लेके
0: माशाल्लाह
3: कितने वॉर्स इन्होंने देखे पानीपत का बड़ी लड़ाई मुगलों से लेके तो हमारा बहुत ट्रेडिशनल वो रहा हुआ है ताज तो इससे हमें ये है अभी के लिए जो मॉडर्न हरियाणा डे हम जब हमारा 66 में बना उसके बाद हम लोग हम इंट्रोडक्शंस देते हैं हम हमारी हिस्ट्री बताते हैं कि हम लोग किस हमारी मिट्टी में क्या है
1: Okay.
3: हम इतने स्पोर्ट्समैन हैं उनके कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं जो हरियाणा के लिए एग्रीन कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं स्पोर्ट्समैन के लिए काम कर रहे हैं हमारा नारा है जय जवान
2: जय किसान
1: ओ
0: जय जवान
1: जय किसान बिकॉज़ इनका एग्रीकल्चर का
0: एग्रीकल्चर
2: नहीं देखो जय जवान जो है जवान हमारा बॉर्डर पे लड़ते हैं जब भी आप देखो कोई बात तो जवान वहां रहते हैं किसान हमारे खेत में जो उसको You know, खेती करके जो टेबल पे आपके फूड लाते हैं सो अभी थैंक्सगिविंग डे तो यही तो था ना तो हमारे वहाँ पे इसको जो जय जवान जय किसान जवान वहाँ पे किसान खेत में पसीना बहा के हरियाणा का स्लोगन
1: अच्छा फिर और क्या होता है
3: हम लोग हमारे फोक डांस करते हैं जिसमें कुछ फाग एक ट्रेडिशनल जो हमारी हरियाणवी की ड्रेस है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस की उससे हम एक रागनी गाई जाती है रागनी इज एक ट्रेडिशनल लोकल
0: फोक सॉन्ग होगा ठीक है
3: कुछ हमारे अभी के फ्यूजन्स भी आ गए रागनी प्लस पंजाबी प्लस वेस्टर्न तो वो भी सॉन्ग्स आ गए भाई साहब के कुछ फेमस सॉन्ग्स भी हैं हम गाएंगे वहां पे
2: उस दिन हमने एक कुछ वीडियो शूट की है
1: अच्छा
2: तो उसमें हमारे एक भाई हैं उन्होंने रागनी गाई है एक मिक्स यू नो तो वो एक बहुत अच्छा हो गया तो उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा बहुत मैं तो है नहीं ऐसा आइडिया किया तो अच्छा गया
1: अच्छा गया
0: सो दैट्स वेरी नाइस दैट्स वेरी
1: गुड या
0: तो अकॉर्डिंग टू जो है एआई वहां के जो खाने मशहूर है ये जो सिंगड़ी की सब्जी मेक सेंस
3: तो यस एआई पे 100% हमारा फेमस तो है चूरमा
0: चूरमा
3: चूरमा
0: चूरमा ओके हरा धनिया छोले
3: मतलब
0: वो भी है
3: नहीं ये भी चटनी की चटनी चूरमा फिर रोटी मतलब मेनली हम लोग उस वाले में हैं
0: अच्छा
3: कुछ सब्जियां हैं हमारी जो ट्रेडिशनल एग्रीडिएंट्स जो अवेलेबल्स होती हैं वो है
1: ओके ओके आपके ज्यादा वो है या
3: खीर बड़ा फेमस है चूरमा खीर दाल ये बड़ा फेमस है
0: ओके कढ़ी पकौड़ा
3: कढ़ी पकौड़ा है ऑल्सो
0: कढ़ी पकौड़ा
2: आपको बताया दही तो फिर सबसे
3: इंडियन हरियाणवी स्टेट्स अगर आप पूरे इंडिया में देखोगे तो सबसे कम नॉन वेजिटेरियन है आई एम नॉट अगेंस्ट द नॉन वेजिटेरियन वी सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ फूड्स बट अगर बाइट उसमें देखोगे ट्रेडिशनली कुछ मोर देन 60-70% पीपल
0: वेजिटेरियन
3: जस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वेजिटेरियन फूड
2: अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला जीटी रोड जो है वहाँ पे जीटी रोड चलता है दिल्ली से लेके वहाँ फरीदाबाद सॉरी अपना
3: अंबाला
2: अंबाला उधर अंबाला है
0: okay.
2: उधर से दिल्ली से लेके अपना सरसा और डाबाली तक तो वहाँ रोहतक में रस्ते में बहुत सारे ढाबे बने हुए हैं
0: तो आप देखो वहीं का खाना अच्छा होता है
2: ये भी 90% जो ढाबे वाले इतने अमीर हो

0: 就给吗？不求你。
1: सही कह रहे
0: हैं। सच में खाया था भी परांठे परांठे मिलते हैं कन्नू पर रख के साथ में दही कितनी बड़ी कटोरी फिर लस्सी ला के आते हैं
1: या क्या बात है
0: पीते ही
2: लाइफ ऐसी होनी चाहिए लाइफ एसी होनी चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल तो हमारे साथ जो संजीव भाई और रजनीश भाई फ्रॉम द हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी भाई तो ये जो आपकी जो जो है सोसाइटी है कब इनके और क्या क्या इवेंट्स होते हैं और एनीथिंग लाइक व्हाट डज यू गाइस डू
3: प्लीज गो अहेड हम फूड ड्राइव करा हमने रिसेंटली अप्रैल मंथ में फूड ड्राइव किया सम नियरली हमने 400 पाउंड डोनेशन
2: 400 पाउंड माशाल्लाह ओके
3: उसमें मार्च एंड ऑफ मार्च और फर्स्ट ऑफ अप्रैल आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट डेट हम लोग क्लीनिंग उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं विद लाइक लीडरशिप ऑफ द रेडस्टोन कम्युनिटी
2: ठीक है
3: पार्टिसिपेट किया है क्लीनिंग कम्युनिटी क्लीनिंग में
2: ठीक है
3: उसके अलावा वी आर हेल्पिंग इमिग्रेंट्स पीपल हु हियर द फर्स्ट टाइम आते हैं यस वी वांट टू बी कनेक्ट विद द गिविंग एस ए प्लेटफॉर्म the whole peoples who have a root in Haryana, directly or indirectly. So, support morally, sometimes financially, sometimes socially supports we provide that.
1: Yeah.
3: Along with
2: this. So, very nice.
1: बहुत अच्छी बात है यार तो आप छोटी मोटी चीजें इस तरह पूरे साल करते रहते हैं न्यू ईयर पार्टी हरियाणा डे स्पोर्ट्स का भी तो ये आप लोग का ज्यादातर
0: जो हमारा जो इवेंट रेडस्टोन में था तो हरियाणा सोसाइटी हरियाणवी सोसाइटी ऑफ कैलगरी का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें
1: ओके
0: मैं उधर भी प्रेसिडेंट हूँ उधर भी प्रेसिडेंट
1: हूँ अच्छा, अच्छा।
0: तो भाइयों को सबको रिक्वेस्ट किया कि एक तो भाई स्पेशल इंडिया से फ्लाइट लेके आ गया वापसी मैं कहा भाई जो मर्जी हो जाए मेरे को आप सब यहाँ चाहिए तो किसी ने फूड का एरिया संभाल लिया किसी ने हॉर्स राइडिंग वाला तो सब ने मिलजुल के ऐसे संभाल लिया तो वो एक बहुत अच्छा
1: इवेंट हो गया
2: आज का जो शो इसको स्पॉन्सर किया कंट्री सोएडा इनका फोन नंबर 4032901111 थिंक टोएडा थिंक द जायंट कंट्री सोएडा मोबाइल मोड के स्पेशलिस्ट रुबीना कासिम अली जो कि अपने शिवर्क्स फॉर टीडी बैंक इनका फोन नंबर 4038707069 केयर सर्कल होम हेल्थ कैलगरी जो कि अपना एल्बर्टा हेल्थ केयर के साथ डायरेक्ट जो है बिल भी करते हैं उनके साथ काम करते हैं इनका फोन नंबर 5879290 और फिर हैं हमारे दूसरे हमजा बट फ्रॉम द बटकराई बैंकुट हॉल अगर आपकी कोई छोटी पार्टी है या तो कोई इवेंट है सो यू कैन कॉल हमजा भाई एट द बटकराई बैंकुट हॉल इनका फोन नंबर 5873520094 नसीम ज्वेलर्स कैलगरी अगर आपने पाकिस्तान की गोल्ड डिजाइन चाहिए कैलगरी में सो दिस इज द ओनली वन यू कैन गेट फ्रॉम द नसीम ज्वेलर्स कैलगरी 8259875000 और फिर अगर आपने कॉन्टेक्ट बनवाने हैं चश्मे अपना जो बनवाने हैं या तो फिर सनग्लासेस कॉल आइज बाय बशीर इन न्यू होराइजन मॉल 4037203937 आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM लेते हैं छोटा सा ब्रेक बैक के बाद विल बी राइट बैक ऑफ कोर्स इवेंट के बारे में हम आपको और थोड़ी डिटेल देंगे और आज जो हरियाणा की जो बातें हो रही बहुत मजा आ रहा है असली घी की खुशबू आ रही है क्या नहीं बड़ा सा लगता है जब हम ऐसे बैठे हो अपना मंजे पर बैठे हो और ऐसी बातें हो रही हो फील्स लाइक वी आर इन हरियाणा इन जो एज वी स्पीक तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद
4: कैनेडा दे विच अपना घर लेना हर किसी का सपना हुंदा है
5: पर अक्सर मॉर्गेज दियां मुश्किल शर्तां बैंक दियां उलझणां ते वध रहे इंटरेस्ट रेट इस सपने नूं साडे तों दूर कर दिंदे ने
4: पर हुण तुहानूं फिकर करन दी लोड़ नहीं मॉर्गेज ब्रोकर अमृता औलख तुहाडा सपना करनगे साकार
5: चाहे तुसीं फर्स्ट टाइम होम बायर हो अपना मॉर्गेज रीफाइनेंस करवा रहे हो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हो
4: ए पंजाबी हिंदी ते उर्दू विच भी तुहानूं बिल्कुल सही ईमानदार ते फायदे दी सलाह देंगे
5: अमृता औलख मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स अज ही कॉल करो 5875000276
4: तुहाडे घर दी गल अमृता औलख करेगी हल लखां दी कमर्शियल डील सिर्फ किस्मत ते नहीं छड़ी जा सकती इसलिए भरोसा करो 21 सालां दे तजर्बे ते कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी वेचनी जां लीज करनी है एपी पुलर रॉयल लेपेज मेट्रो तुहाडी कमर्शियल डील नु करनगे बेहद आसान 21 सालां दा तजर्बा भरोसेयोग सेवा स्मार्ट डील अते बेहतरीन नतीजियां लई कॉल करो एपी पुलर 4036677035 403-660-7035 तुहाडे बिजनेस लई सही जगह सही मौका ते सही फैसला
6: बंगला मोटर कार दिला दे एक नहीं तो चार दिला दे। जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं।

0: लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी। इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, अज ही डायल करो 5876174696 587-617-4096। ओइसे स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
4: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है। होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है।
3: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो। ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया। ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो। तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन। बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208।
4: मर्सिडीज कार खरीदना चाहुंदे हो, हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
5: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757।
4: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।
6: पूरा साल हो गया गाना सुनती नू, बस कैलगरी च कार लैण दियां फीलिंग आई लई जायो। वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है। उन्हां दे आउण तो पहला मेनू घर चाहिदा है।
7: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल, जिन्ना दी सलाह नाल हुण घर इक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनिया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है।
6: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लों नाल इक बार जरूर गलबात करो। जग्गी ढिल्लों दा फोन नंबर है 416-2445।
8: ਓਹੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨੀ ਲੋਡ ਮਿਲਿਆ
2: ਕੀ ਹੋਇਆ
8: ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੀ ਮਿਲ ਹੋਣਾ ਦੋ ਦਿਨ
2: ਓਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਵੜੈਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ

0: ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਸਕੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਾਨਸ ਪਹੂਜਾ 5871321208 ਜਾਂ ਰਮਨ ਵੜੈਚ 7807530001 ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 28ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਖੂਨਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਓ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ 7 ਨਵੰਬਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਓ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲ ਕਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ 403-617-9045 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਰਸੇਮ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 403-701-1308 ਤੇ
2: Welcome back to Salam Number Se Khel Ke on Radio Sustagam 94.7 FM. Aaj hi hamare paas hamare bahut acche dost maujood hai Sanjeev Nagpal ji aur unke jo dost hai wo jo hai apne Rajnish unko jana pad gaya to wo chale gaye lekin jo Sanjeev abhi bhi idhar hai from the Haryanvi Society of Calgary inka and of course jo hai Protex Block hamare good friend Mandi bhai aapke jo I think sponsor hai to inka ek jo hai Diwali and Haryana Divas hone ja raha hai October ki 24 tarikh ko at Crown Banquet Hall aur tickets are only $60 including food and entertainment aur for the kids between 6 and 12, it's only $40 or under 6 will be free for the kids. You know, I mean, dinner hoga, performances hain, or celebration hoga on 6 baje shaam ko darwaza kholega and tickets are available online or you can call Sanjeev bhai. Acha apka number kya Sanjeev bhai?
3: 403-608-5051
2: okay, ठीक है और यू नो ये बड़ा अभी जो अभी जो है अभी आपने ऑफ आया एयर का हरियाणा और जो मुल्तान का भी बहुत क्लोज अपना रिलेशन है इसलिए दोनों
3: जी जी जी वो क्या जैसे मैंने आपको बताया कि जब पार्टीशन हुआ
2: जी.
3: तो उस टाइम जो हरियाणा में रहते थे वो मुल्तान की ओर चले गए हम मुल्तान से हरियाणा में आ गए
4: तो
2: अच्छा आप मुल्तान में थे
3: हम मुल्तान में थे दादी थी उन्होंने हमें ये सारी स्टोरी बताई है जस्ट पास अवे 5-4-5 years बैक तो उन्होंने ये सारी स्टोरी बताई है तो मुल्तान से हम इधर आए तो यहाँ से जो बंदे मुल्तान की ओर गए तो वहाँ अभी भी वो जो उनका पहरावा है वो हरियाणवी है और पहरावा के साथ वो लैंग्वेज भी हरियाणवी है तो हरियाणवी ही बोलते हैं उसी कल्चर उनको भी रागनी वगैरह सब कुछ आती है तो अभी जैसे मैंने आपको बताया मैं शहर हांसी जो है हरियाणा का तो उसमें हमारे किला भी है ऐतिहासिक पृथ्वीराज चौहान जी का
2: जी।
3: तो वहां से जो बंदे मूव होके गए थे वहां पे तो उनके साथ क्या करें वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं
4: अच्छा।
3: तो उनके साथ लाइव बात करते हैं वीडियो कॉल्स करते हैं तो एक से दूसरे को तो वो कुछ ऐसे परिवार आपस में मिले हैं जो इतने सालों से
4: नहीं मिल
3: तो ये कुछ तो हुआ है अच्छा जो ये फेसबुक ये चीजें हुई है एक दूसरे से कनेक्शन तो ये हरियाणा का सेम जैसे पंजाब का दो हिस्से हैं आधा पंजाब हमारे इंडिया में रह गया तो आधा पाकिस्तान में तो सेम थिंग हरियाणा के जो बंदे जो मुल्तान में जाके वो बस गए
4: बच गए अच्छा तो है इतने लोग वहाँ पर आपको कुछ अंदाजा है कितने होंगे मुल्तान
3: नंबर नहीं आई है मुझे मैं जैसे आपको बताया लॉन्ग टाइम पहले वहां से निकला हूँ तो मेरा जो रहना हुआ वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे भी रहा हूँ तो इधर हांसी में भी रहा हूँ तो मेरा बस उसके बाद आई वाज यंग लाइक 22 सो मैं जब वहां से निकला
2: इवेंट के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे आप
3: हाँ बस यही है कि इस इवेंट को हरियाणा सोसाइटी ऑफ कैलगरी आपने अभी कहा कि जो नो स्पॉन्सर्स के सब आप कह रहे थे
2: जी
3: मनदीप दुग्गल जी जो उनसे हैं जब भी मैंने उनको कोई रिक्वेस्ट किया ये किसी ने तो हर जगह सो उनकी हेल्प के बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रोटेक्स ब्लॉक से उन्होंने कहा कि संजीव जो भी आपको बनता है आप मुझे बता दें सो उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे तो अगेन बहुत सारे और भी स्पॉन्सर हैं तो मेजर स्पॉन्सर वो हमारे वो हैं
4: अच्छा
3: और उसके बाद बहुत सारे और भी स्पॉन्सर हैं तो उन्हीं के सहयोग से ये हम इवेंट करने जा रहे हैं तो इस इवेंट में कल्चर हरियाणा तो जो है जो हमने डांस वगैरह दिखाना ही है

0: उसमें पंजाबी भंगड़ा या गिद्दा ये सब भी हम कर रहे हैं प्रोग्राम. और अगेन ये कल्चर प्रोग्राम ओनली नॉट फॉर हरियाणा, इट विल बी फॉर एवरीवन राइट. सो मैं ये चाहता हूँ कि आप आए जिस कल्चर से भी बिलोंग करते हैं वो ड्रेस्ड अप होके आए. तो उसमें हम जो अच्छे ड्रेस वाले होंगे तो उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी देंगे. सो डोर क्रैश जो आएंगे उनकी जो पर्चियां होंगी तो उनको भी डोर पे जाके
1: उनको गिफ्ट.
0: सो नाइस. सो इस तरह का यू नो
1: क्या, हाँ इससे ना नेटवर्क होता है, सब डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं आपस में, एक दूसरे को जानते हैं. आप हमारे कल्चर को जाने, हम आपके कल्चर को जाने, हम ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है ना. और अब तो कनाडा, आप पता है कि कनाडा में मल्टी कल्चरल है और डाइवर्सिटी है, प्लूरलिज्म है, और हर कोई बंदा अपना कुछ कर सकता है. जो यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आप अपना फेथ, अपना रिलीजन, अपना जो भी करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम करें. और ये बहुत अच्छी बात है कि सब आराम से अपना कुछ जो भी दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं.
0: आप ये लगा लो मार्क कार्नी है या डैनियल स्मिथ है, ये सब अब नमस्ते हमसे सब, तो वो भी सब वहाँ से जुड़े हैं. तो उनको पता चल गया ये कल्चर, हम मिलजुल के सभी एक मल्टी कल्चर के साथ जुड़ के ही चलना है.
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही.
2: तो यू नो दिवाली वहाँ पर मनाना, यहाँ पे मनाना, ऑफ कोर्स यू विल डू योर बेस्ट कि यहाँ भी वैसा ही टेस्ट आए, वही अपना लोगों को ऐसे ही लगे.
0: क्राउन बैंकट हॉल वाले जो हैं उन्होंने भी यही कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, अच्छा खाना बना के दूंगा. और कुछ चीजें हैं जो हरियाणा जैसे गोल गप्पे अनलिमिटेड लगाए हैं,
2: अच्छा
0: वो एक्स्ट्रा चीजें जो उन्होंने एड ऑन की हैं.
2: ओह नाइस, ओके.
0: और जैसे आप जाओगे वो एक रतना वेलकम गिफ्ट और सॉरी ड्रिंक, सो यू नो कुछ गिफ्ट वगैरह भी गिव अवे हैं. और दिवाली में एक वही होता है कि यू नो जाते हुए कुछ गिफ्ट होना चाहिए, तो वो हमने सभी फैमिलीज के लिए गिफ्ट भी बनाया, सब फैमिली के लिए जो भी आ रहा है सब फैमिली. और हम जैसे हर कल्चर के बंदों को बुला रहे हैं, जहाँ जैसे आपको बताया राजस्थान हो गया, सब मराठी हो गए, सबको बुलाया. तो दो दो टेबलें मंदिर और सबसे एक एक को भाई आप आओ, मोस्ट वेलकम. सो दिस इज जस्ट टू मीट, लाइक ऐसा नहीं कि हम पैसों के लिए कुछ कर रहे हैं, ये तो जस्ट मिलने के लिए एक यू नो. तो अगेन मैंने आपको बोला, मन दुग्गल साहब ने हमें कहा कि आप करो, हम आपके साथ हैं. तो वही है कि तो हम फंड्स नहीं देख रहे इस टाइम, हम ये देख रहे हैं कि सब कल्चर आके
1: मिले,
0: सभी कल्चरों के साथ. इसमें 300 बंदे तक,
1: 300 लोग
0: जी जी.
2: और ना अभी जैसे अपना जो अगले मंडे जब ये अपना रेफरेंडम होगा संजीव भाई
0: जी,
2: तो अपना लाइक मोस्ट लाइकली विल बी इन कनाडा, ऐसा ही होगा क्या? यू नो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गो नेक्स्ट स्टेप, लेकिन आई थिंक इज गोना किल राइट हियर इंशाल्लाह, ताकि लोग जाके वोट दें. गो एंड वोट गाइस, ये बहुत जरूरी है. आई एम श्योर हम यहाँ पे कनाडा में अपना मूव है, तो कनाडा से हम अभी क्यों, तो हम फिर किस तरह जो है निकल सकते हैं. तो मेक श्योर गो एंड वोट, then I think everything should be fine. अगर आप वोट नहीं देंगे then of course there always a risk. तो अपना संजीव भाई, you know, just on this note, हम इतने सालों से कनाडा में रह रहे हैं, तो ऊपर वाले ने हमें इतनी इज्जत दी है, गवर्नमेंट इतनी इज्जत देती है. आप कोई फेस्टिवल करें, कभी भी करें, कुछ भी कर सकते हैं, कोई में रोक दो
0: जी.
2: बट जो जो अपना फायरवर्क्स होगा उनका वी हैव टू ओबे द लॉज,
0: दैट्स राइट.
2: जितने हमारे लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी पेनल्टी भी है, एंड पुलिस विल बी लुकिंग फॉर जो है अपना दोस काइंड ऑफ थिंग्स.
0: तो अभी
2: प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग.
0: रेडस्टोन कम्युनिटी का मैं प्रेसिडेंट हूं, तो उन्होंने हमें भेजा है कि ये फ्लायर्स हम भेज रहे हैं, और अभी मैं आने से पहले सबको मिल के आया हूं कि ये उनके रूल रेगुलेशन है. वोट्स के लिए भी अपील करके आए हैं. देखो ये राजनीति नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे, इस टाइम देश का मतलब, तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो किसी तरह आपको कह रही है कि नहीं हम वो नहीं चाहते. तो दूसरे इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, देश का जब
2: देश
0: के सब इकट्ठे खड़े होना चाहिए, तो उसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए.
1: बिल्कुल सही.
0: डैनियल स्मिथ ने कभी भी नहीं कहा कि मुझको इस देश को अपने को अलग करना, वो तो अपनी राइट्स ढूंढ रही है. ठीक है, तो मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, मैं इतना नेता तो नहीं हूँ, बट ये जरूर है मैं समझता हूँ कि वो गलत नहीं कर रही. वो चाहती है कि हमारे अल्बर्टा के पास अच्छे राइट्स हों. अल्बर्टा देखो सच में है कि जितने भी इवेंट हुए शी ऑलवेज देयर फॉर इट फॉर अस राइट. तो ये दिखाता है कि ये अब हमारे जो भी कोई कल्चर इवेंट होती है तो शी कम्स ओवर देयर. जो भी अल्बर्टा गवर्नमेंट से बंदे हैं यू नो, चाहे हमारे MLAs हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो सभी आते हैं
2: जी.
0: हमें बहुत खुशी होती है कि यू नो हम इस प्राउड कंट्री में रह रहे हैं.
2: बिल्कुल,
0: यहाँ पे इंडिया में अगर हम MLA को बुलाने जाते हैं तो 36 नकारे जाते हैं उनके बहुत कहना पड़ता.
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: सही कह रहे हैं.
0: तो हमें तो प्राउड होना चाहिए. डैनियल स्मिथ जो इनकी टीम है ये मिलके ये भी ऊपर ऑफर कर रहे हैं.

0: हम कनाडा के साथ ही रहें और हर कोई बाहर जाए और मैं अभी रेडस्टोन में जो है ना हमारे 25 30 जने शाम को इकट्ठे हो जाते हैं सबको हाथ जोड़ के यही कहा कि जो नहीं वोट करके आए प्लीज जाएं
1: हर को यस वोट और एडवांस या एडवांस वोटिंग वो जो है स्टार्ट हो चुकी है
2: जी
1: या वो आज से स्टार्ट हो गई टिल जो है टिल फ्राइडे तो आप जाएं एडवांस जाके दे दें रात के 8 बजे तक खुले हैं सारे पोलिंग स्टेशन और आपका स्टेशन कौन सा है यू कैन जस्ट गूगल इट और देन यू नो कि आपका जो पोलिंग स्टेशन कौन सा
2: ऑनलाइन भी तो कितनी
1: ऑनलाइन भी यस बस जाके वोट दें दैट्स ऑल यू नो जो है अपना बहुत जरूरी है
2: बिल्कुल बहुत ज्यादा
1: तो आज का जो शो है स्पॉन्सर किया एक बार फिर से टू आवर स्पॉन्सर्स जो कंट्रीलिस्ट हो 4032901111 रूबीना कासम अली फॉर द मॉर्गेज स्पेशलिस्ट 4038707069 और फिर है केयर सर्कल होम हेल्थ जो है कैलगरी 5879290 Hamza Butt from the Butt Karai Banquet Hall 5873520094 Nasim Jewelers Calgary 8259875000 and Aizba Bashir 4037203937 ek baar phir se Diwali ka event hone ja raha hai 24 October ko at jo hai Crown Banquet Hall isko jo organize kiya hai Haryanvi Society of Calgary hamare bhai yahan par maujood hai Sanjeev bhai tickets are $60 and between 6 and 12 years of care for the kids only 40 and for under 6 will be free aur shaam ko 6 baje door will open and it's going to be dances dinner and for jo hai Diwali ka celebration hoga
0: non veg aur veg dono hoga
1: there we go veg and non veg dono hoga I enjoy
0: it Haryana wale mostly allow nahi karte but
2: अच्छा अच्छा
1: अगर आप जो हरियाणा से आप मेक श्योर यू जो है ड्रेसअप जो हरियाणवी एज वेल तो फिर वो पिक्चर्स वगैरह अच्छे वीडियोस अच्छी आएगी फिर आपका जो कल्चर हमें जो देखने के लिए मिलेगा तो मेक श्योर यू ड्रेसअप लाइक हरियाणवी तो बहुत चलेगा एनीथिंग एल्स
0: थैंक यू सर आपने हमें इतने
1: अरे सर आज तो मजा आ गया
2: हमें बहुत कुछ जानने को मिला हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
1: ये जो अपना छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं ना आई एम श्योर जैसे मुल्तान हो गया हरियाणा हो गया उनमें इतनी प्यार मोहब्बत है वो लोगों में उनके खानों में उनके कल्चर में कि हम ये पॉलिटिशियन को बस बाहर रखे रहें ताकि हम ये मिल के रहें फिर से इतनी प्यार मोहब्बत है और यू नो वो स्मेल आती है यू कैन टेल यू नो वी लव ईच अदर सो मच तो बड़ा अच्छा लगा आप आए
0: थैंक यू बस मैं यही कहूंगा आप शो करते रहे हमें बुलाते रहे
1: सर आप शो करते रहे हम आपको बुलाते रहे
0: ठीक है
2: तो अब हमें इजाजत दीजिए अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह और आपको अल्लाह
1: तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगा कल आपको फिर से अपना जो है वेनिसडे विद द नेक्स्ट एडिशन ऑफ कॉफी जरा विल टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स टुमारो फिल्म्स टॉक होगी फिल्म्स विल टॉक अबाउट कैलगरी फिल्म जिसका जो आज जो इस बार जो अपना सीजन स्टार्ट हुआ इट्स नॉट वेरी वेल इट्स नॉट वेरी जो हैप्पी तो इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट द फ्लेम्स कल रात 8 बजे राइट हियर ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग विल टॉक टू यू टुमारो
3: द टाइम इज 9 PM
4: यू आर लिसनिंग टू फेयरचाइल्ड रेडियो CHKF FM 94.7 A multicultural radio station in Calgary.
5: अल्बर्टा में संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है हम पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए $8 मिलियन का निवेश कर रहे हैं ताकि अल्बर्टा के परिवारों व्यवसायों और समुदायों के लिए खतरा बने गैंग्स एक्सटॉर्शन और आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके यह धन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक मजबूत निगरानी खुफिया जानकारी डिजिटल फोरेंसिक और जाँच क्षमताएं प्रदान करेगा ताकि संगठित आपराधिक गिरोहों को खत्म किया जा सके और अल्बर्टा वासियों को सुरक्षित रखा जा सके अल्बर्टा सरकार की ओर से एक संदेश
6: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते वीकेंड ते सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
7: व्हेनेवर यू वांट इट व्हेयरएवर यू आर एट द पाम ऑफ योर हैंड्स लिसन टू FM 94.7 एनीवेयर विद द फेयरचाइल्ड रेडियो ऐप Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
8: Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station. Sabarang Radio 94.7 FM.
9: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8 PM. Sundays 1 to 5 PM.
8: Visit sabarang.ca.
6: Punjab to Prasidh Patrakar.

0: ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
1: जब भी जरूरत पड़ती है अल्बर्टा के बाशिंदे मुत्तहद हो जाते हैं और आने वाला रेफरेंडम बहुत अहमियत रखता है। ये अल्बर्टा के बाशिंदों को अपने सूबे पर ज्यादा अख्तियार दे सकता है। हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट ओटावा की बजाय अल्बर्टा करे और हमारे अपने एनर्जी इमिग्रेशन और समाज की खिदमत पर ज्यादा अख्तियार हासिल हो। 19 अक्टूबर को एक मुत्तहद कनाडा के अंदर एक मजबूत और खुद मुख्तार अल्बर्टा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। विजिट करें अल्बर्टा रेफरेंडम 2026.ca। इस इश्तिहार की अदायगी गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की जानिब से की गई।
2: The following program speaks to the South Asian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: ओवी देर शाम तक। ता देर किस गल दी? आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496 ओएसएस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696।
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंड ड्राइव,
2: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
2: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222। सत श्री अकाल कैलगरी, की तुसी भी लब रहे हो इंडिया दा असली देसी ते खालस स्वाद?
1: आ जाओ फिर, देर किस गल दी, मदर इंडिया लेके आया है तुहाडे लिए बेमिसाल जायका ते वैरायटी।
2: शुद्ध वेज होवे जां होवे लजीज नॉन वेज, हर एक डिश विच मिलेगी तुहानू ओही घर वर्गी महक, ताजगी ते लाजवाब स्वाद। कोई परिवारिक प्रोग्राम है जां पार्टी है तां 40 मेहमाना तक लई शानदार प्राइवेट डाइनिंग भी है।
1: किसे भी वेले भुख लगे कोई फिक्र नहीं, दिन देखण दी लोड़ नहीं, घड़ी देखण दी लोड़ नहीं। मदर इंडिया रेस्टोरेंट तुहाडे लई खुला है 24 घंटे हफ्ते दे 7 दिन।
2: चाहे बैठ के खान दा मजा लो जां फिर घर लई पैक करवाओ, सिटीस्केप लैंडिंग नॉर्थ ईस्ट कैलगरी 403-936-7777 403-936-7777 मदर इंडिया रेस्टोरेंट। कहंदे ने सोहनी जिही मुस्कुराहट दिन भी बना दिंदी है ते दिल भी जित लैंदी है,
3: ते तुहाडी इसे मुस्कुराहट नू सेहतमंद ते खूबसूरत रखण लई तुहाडे अपने नॉर्थ ईस्ट कैलगरी विच है सैडल रिज डेंटल सेंटर।
2: पिछले 17 सालां तों नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दी सेवा कर रहे सैडल रिज डेंटल सेंटर विखे डॉक्टर चोंग अते उहनां दी टीम वल्लों चेकअप, क्लीनिंग, फिलिंग, दंद कड्ढण, रूट कनाल, क्राउन ब्रिज अते डेंटल एमरजेंसी लई सेवावां उपलब्ध ने।
3: इत्थे CDCP अते होर इंश्योरेंस प्लान स्वीकार कीते जांदे हन, नाल ही डायरेक्ट इंश्योरेंस बिलिंग दी सहूलत भी है।
2: नवे मरीजां दा निघा स्वागत है।
3: सैडल रिज डेंटल सेंटर, सैडल टाउन सी ट्रेन स्टेशन दे बिल्कुल नेड़े, बेल स्टोर दे नाल 216 सैडल टाउन सर्कल नॉर्थ ईस्ट।
2: अपॉइंटमेंट लई अज ही कॉल करो 403-730-2026 403-730-2026 सैडल रिज डेंटल सेंटर, क्योंकि तुहाडी मुस्कुराहट है बेशकीमती।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ। ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਜੇ ਜੀ।
4: ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 9-9, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 9 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 9-9 ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ PR ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: License number 10394।